0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 7. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1. It's hot.

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा है, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करनी?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े हो गए, तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख के क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, मेरी
0: मेरी मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लो भाई। मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपने नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
5: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
6: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

पता है ना रात को सोया जाता है, उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: अर्ज किया है
8: इरशाद, इरशाद

0: IPay payments ka wah tarika. With IPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर मैंने IIM में जाने के लिए बहुत ट्राई किया, 2 साल कोचिंग भी करी, फिर भी नहीं हो पा रहा, क्या करूं?
1: अरे तू ये सब मत कर, तू गेट नंबर 2 से जा, वो खुला ही होता है और मैं वहीं से जाता हूँ।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: हेलो,
1: इज दैट वर्षा?
0: हु इज दैट?
1: वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारे गम पा।
0: क्या नाम बताया आपने?
1: धारे गम पा। हमारा ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
0: थोड़ा बहुत गा लेती
1: हूं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पर ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर धारे गम पा में आप शॉर्ट लिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
0: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
1: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए आप। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
0: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
1: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी, आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा वन सेकेंड, देखिए।

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सा, स्टार्ट।
1: ओ, मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊँ चाहिए।
1: ओ,
0: तेरा तेरा तेरा सुरूर, एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा।
1: oh
2: लेकिन
1: अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष महापुरुष।
1: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची इट्स हॉट।
7: अर्ज किया है
8: इरशाद इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
3: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM, मिर्ची वन। It's hot.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: जॉन अब्राहम, आपके हिसाब से द टॉप फिट बॉयज ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री।
3: फर्स्ट रेफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी वरुण धवन एंड आई टेल यू व्हाई, क्योंकि वरुण का जो फिजिक है वो बहुत ही प्रोपोर्शनेट है, उसके लेग्स बहुत ही स्ट्रांग है, टाइगर श्रॉफ फैंटास्टिक बॉडी, रणवीर सिंह एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फिट, एंड ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन। ऑनेस्टली अमंगस्ट ऑल दीस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई थिंक सबसे फिटेस्ट इंसान हमारे इंडस्ट्री में इज अक्षय कुमार, एंड आई मीन होलिस्टिकली फिट। ही कैन सर्वाइव एनीवेयर। अगर आप उसको माउंट एवरेस्ट पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, अक्षय कुमार विल बी द ओनली गाय हु विल सर्वाइव एंड कम आउट।
2: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम। अक्षय कुमार इज द ओनली पर्सन इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बाय चॉइस इन जगहों पर जाएंगे। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेलो शॉप्स, आप प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
1: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
0: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
2: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
0: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
3: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
4: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070 7687।

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: मैं एक लड़के को एक महीने से डेट कर रही थी, पर मुझे आज पता चला कि वो मैरिड है, क्या करूं?
1: अरे अच्छा है ना, एक बार जो उसने कमिटमेंट कर लिया तो दूसरी बार भी कर ही लेगा ना।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 9. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1. It's hot.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na virtual la burka. Milci, burka.
1: हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारे रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेस वन से फेस टू गई थी, याद है आपका?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लग रहा
2: है? नहीं, मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। हेलो, चारू मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स अ

0: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: दोस्ती का उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
8: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
9: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
10: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है?
3: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं आप, यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। यू डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
2: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची हिट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोल्डर।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.

0: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
1: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: Mirchi Helpline?
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं अपने पौधे को पानी दे देकर थक गया हूँ, पर पौधा बड़ा ही नहीं हो रहा, क्या करूँ?
1: अरे गोचू, तो तेरे को किसने बोला था कि आर्टिफिशियल पौधा ले?
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10। आप सुन रहे हैं मिर्ची 1 कतर।

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. Cabana. Murga, murga. La vispa, la murga. Mirchi, murga.
1: हेलो
2: हेलो भाई राज, एक ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं,
1: बोल कौन रहा है?
2: नहीं, मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में? कितने पैसे कमा? तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत में पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताने चाह रहा, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से।
1: हाँ, कटी। कौन बोल रहा है?
2: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा है तू पर्स में, मेरी मेहनत की तूने ऐसी
1: काटी ऊपर से, तो फोन करके आ रहा है कि साले 17 रुपए।
2: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला है, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
1: तो मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
2: हाँ, तो मैं क्या करूँ उसका?
1: जरा वापस दे दो यार।
2: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस से मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके? कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने।
1: एड्रेस दे अपना, वो कर दे, मैं तुझे कॉल कर दूंगा।
2: एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पैसा तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
1: क्या करूं बताओ?
2: मेरे साथ बोलो कुकड़ों को।
1: सॉरी
2: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था? मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप, कुकड़ों को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
3: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
4: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
5: 89.6
0: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चांटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चांटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चांटा लगा
3: लगा
6: मिर्ची। It's hot.

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: गोविंदा, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
3: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है, इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
2: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
3: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
2: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
3: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं, इन लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
2: फिटनेस का पता नहीं, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय अंजलि, मिर्ची हेल्पलाइन बोल।
0: यू नो आई लव्ड विनिंग, पर मेरा बीएफ मैचिंग कपड़े कभी नहीं पहनता, वो हर बार ना बोल देता है, क्या करूं?
1: हाय, तो गलत थोड़ी बोल रहा है, लड़के स्कर्ट में थोड़ी अच्छे लगते हैं अंजलि।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rambala. Burga, burga. La vieta la burga. Milci, burga.
2: हेलो,
3: इज दैट वर्षा?
2: हु इज दैट?
3: वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारे एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारे गमा पा।
2: क्या नाम बताया आपने?
3: धारे गमा पा। हमारे ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
2: थोड़ा बहुत गा लेती
3: हूं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर धारे गमा पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
2: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
3: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए आप। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
2: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
3: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी, आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए ऊ।

0: वही वाली ऊँच चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सर। स्टार्ट
1: मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊँचाइए ऊँचाइए। तेरा तेरा तेरा सुरूर, एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा।
1: oh
2: लेकिन
1: अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
4: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
5: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
3: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
5: कम है के?
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: लगा
6: मिर्ची। It's hot.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: मिलिंद सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
2: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, I work very hard, so I need that fitness level.
1: And I need your motivation level, Milind Soman. Aap sun rahe hain Mirchi, it's hot. Bollywood Boldaal.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldaal.
3: Only on Mirchi, it's hot.

0: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
1: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
2: कैसे रुक सकता है?
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
3: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर मैंने IIM में जाने के लिए बहुत ट्राई किया, 2 साल कोचिंग भी करी, फिर भी नहीं हो पा रहा, क्या करूं?
1: अरे तू ये सब मत कर, तू गेट नंबर 2 से जा, वो खुला ही होता है और मैं वहीं से जाता हूँ।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोले परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करनी?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े हो गए, तेरे को बर्थडे विश कर रहे, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख के क्यों नहीं आता? आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा,
0: मेरी मेरी मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लो भाई। मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपने नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6
3: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची इट्स हॉट।
7: दोस्ती कैसे सुले मैडम? No sorry, no thank you.
8: भाई साहब sorry and thank you. हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
9: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
10: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6 FM मिर्ची वन। It's hot.

0: हेलो शॉप्स, आप प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
1: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
0: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
2: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
0: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
3: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
4: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।
5: Yeah. Wanna feel that? Come on, girl. Be the beat. Yeah, I'll have this. Check this out now.

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: मैं एक लड़के को एक महीने से डेट कर रही थी, पर मुझे आज पता चला कि वो मैरिड है, क्या करूं?
1: अरे अच्छा है ना, एक बार जो उसने कमिटमेंट कर लिया तो दूसरी बार भी कर ही लेगा ना।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rambana. Murga, murga. La vida la murga. Mirchi, murga.
1: हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल
2: नहीं? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
1: मैंने सोचा यार रिक्शा
2: वाला,
1: तुम आओ कभी मिलो मुझे, तुमसे रिक्शा ही चलवाऊंगी।
2: नहीं रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अर्ज किया है
3: इरशाद, इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा, जा.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
3: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने.
2: हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, it's hot. A ring for the newly married? Cute little bangle for the newborn?
7: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension। फिर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, गोल्ड एंड समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
8: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जॉन अब्राहम, आपके हिसाब से द टॉप फिट बॉयज ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री।
2: फर्स्ट रेफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी वरुण धवन एंड आई टेल यू व्हाई, क्योंकि वरुण का जो फिजिक है वो बहुत ही प्रोपोर्शनेट है, उसके लेग्स बहुत ही स्ट्रांग है। टाइगर श्रॉफ, फैंटास्टिक बॉडी। रणवीर सिंह, एक्सट्रीमली फिट। एंड ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन, ऑनेस्टली अमंगस्ट ऑल दीस इंक्लूडिंग माई सेल्फ आई थिंक सबसे फिटेस्ट इंसान हमारे इंडस्ट्री में इज अक्षय कुमार। एंड आई मीन होलिस्टिकली फिट, ही कैन सर्वाइव एनीवेयर। अगर आप उसको माउंट एवरेस्ट पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, अक्षय कुमार विल बी द ओनली गाय हु विल सर्वाइव एंड कम आउट।
1: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम। अक्षय कुमार इज द ओनली पर्सन इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बाय चॉइस इन जगहों पर जाएंगे। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
1: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन स्टेशन
2: 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: emergency helpline.
1: Hi there, what's up? Tell me.
0: सर मुझे वेकेशन पे गोवा जाना है पर बॉस लीव ही अप्रूव नहीं कर रहा है, क्या करूँ?
1: Oh man, गोवा के लिए अप्रूव नहीं कर रहे ना तो शिमला या मनाली चले जाओ.
2: रख रख.
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983. इट्स

ये बेहतरीन सा ट्रैक आपने सुना, शरारत, शाश्वत सचदेव, मधुवंती बागची और जैस्मिन सैंटस की आवाज में। और अब मैं आ चुकी हूँ, यानी कि मिर्ची ईशा, आपको सुनाने इस हफ्ते के इवेंट्स, शोज, एग्जीबिशन, सब कुछ सुनाऊंगी। मेरे साथ बने रहिएगा। और इस तपती गर्मी में कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या गुड ऑप्शंस हैं, क्योंकि इस बार कतर में होने वाले हैं बहुत सारे ऐसे इवेंट्स। अगर आपने कोई प्लानिंग नहीं की है समर वेकेशन की, कि कहीं आप जा नहीं रहे हैं, कहीं आप कतर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो आपको सारा जो एक पैकेज है ना, फुल पैकेज आपको बना के दूंगी यहीं, यानी कि मिर्ची ईशा के शो पे। तो करना क्या है, मेरे साथ बने रहना, यानी कि मिर्ची ईशा के साथ, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. हेलो
2: हेलो भाई राजा, ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं,
1: बोल कौन रहा है?
2: नहीं, मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में? कितने पैसे तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत ने पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताना चाह, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
1: हाँ, कटी। कौन बोल रहा है?
2: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा तू पर्स से मेरी मेहनत की, तूने ऐसी
1: तूने जेब काटी
2: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
1: तो मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
2: हाँ, तो मैं क्या करूँ उसका?
1: जरा वापस दे दो यार।
2: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फिरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके?
1: 17.5 रुपए
2: कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने। एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पैसा तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
1: क्या करूं बताओ?
2: मेरे साथ बोलो कुकड़ों को।
1: सॉरी
2: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था? मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ों को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
3: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
4: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हम औरतें ना बहुत ज्यादा सिंपल होती हैं। अगर पति से लड़ लेती हैं ना तो बस एक शॉपिंग करके अपना मन बहला लेती हैं। जी हाँ, ये न्यूज उन्हीं के लिए है जिनकी अभी रिसेंटली अपने पति से लड़ाई हुई है और वो चाह रही है कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग करना अपनी लाइफ में। तो आपके लिए दोहा समर ट्रेड फेयर लेके आई हूँ जो हो रहा है आपके DECC में, एंड ये 10 AM से लेके 10 PM तक है। फ्राइडेज 3 PM टू 10 PM तक है, एंड ये सिर्फ और सिर्फ जुलाई 4 तक ही है, यानी कि 4th of July को ये लास्ट डेट है। उससे पहले पहले अगर पति से लड़ाई हो गई है या हो चुकी है या होने वाली है तो आप अपना ठिकाना याद रखिए कि कहाँ जाना है और क्या खर्चा करना है। एंड इसके प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ का जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है दैट इज टोटली यूनिक, क्योंकि एक छत के नीचे आपको ब्रांडेड सामान मिल जाएगा, एक्सक्लूसिव ऑफर्स मिल जाएंगे, डील्स मिल जाएंगे, उसके अलावा होम एसेंशियल्स, गिफ्ट्स, परफ्यूम्स, क्या चीजें हैं जो आप बोलोगे वो सब मिल जाएगा आपको अंडर वन रूफ। तो बस करना क्या है, इस वीकेंड जा सकते हैं। एंड हाँ, एक मौका आपके पति को भी दे दीजिए कि पैसे कटेंगे अगर आप लड़े मुझसे। बाकी स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: मिर्ची फ्रेश माल।
2: जब हर बीट में हो तड़का तब बनती है चटनी।

इस गाने को आवाज दी है नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने, म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नीलकमल सिंह ने, और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6, मिर्ची।

साल का वो महीना जब बच्चे इस महीने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं, और करते भी क्यों हैं? क्योंकि कतर का सबसे बड़ा टॉय फेस्टिवल होता है इस महीने। और जब बात हो कतर टॉय फेस्टिवल की, तो भाई वो हमेशा ग्रैंड ही होता है। ये अपने बच्चों को रेडी कर लीजिए, क्योंकि ये होने जा रहा है आपके कतर में शुरू। जी हाँ, शुरू ऑलमोस्ट हो चुका है। एंड आप इस वीकेंड अपना प्लानिंग कर सकते हैं, जा सकते हैं। मात्र 50 कतरी रियाल में एंट्री मिलेगी। उसके अलावा DECC में ये होने जा रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे होता है ये। आई ऑलवेज अटेंड, एंड ऑफकोर्स आप भी अगर कतर में कुछ सालों से रह रहे हैं तो आप टॉय फेस्टिवल तो जरूर गए होंगे। चाहे आपका बच्चा हो या आप यंग हो, जरूर गए होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा इंजॉयबल प्लेस है जहाँ बड़े चाहे छोटे किसी के लिए भी आपको कुछ भी मिल जाएगा, मतलब सब एंजॉय कर लेंगे। एक और चीज आपको बता दूं कि बहुत सारी न्यू एडिशंस भी इसमें हुई हैं। तो टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स, विनी द पू, द फ्लिंटस्टोन्स, द पैकमैन, ये सब ऐड हुए हैं। अगर आप इस एक्सपीरियंस को और मेमोरेबल बनाना चाहते हैं तो जाके विजिट करिए। आई नो आप जाएंगे, अगले हफ्ते भी जा सकते हैं, क्योंकि ये 31 जुलाई तक ही है। आप एंजॉय कर सकते हैं इस समर वेकेशन। अगर कहीं नहीं जा रहे हैं, बच्चों को लेके जाइए इस गर्मियां, और एंजॉय करिए खुद भी और बच्चों को भी एंजॉय करवाइए। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची इट्स हॉट।
7: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
8: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
9: बहुत कुछ होगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

गर्मियों की सबसे खास बात ये है कि गर्मियों में आते हैं खूब सारे मैंगो और आते हैं तरह तरह के मीठे मैंगो, और मैं बात कर रही हूँ यहाँ मैंगो फेस्टिवल की। थर्ड एडिशन ऑफ द पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल होने जा रहा है आपके दोहा कतर में। इसको हम्बा एग्जीबिशन के नाम से भी जाना जाता है। जुलाई 9 से ये शुरू हो रहा है ईस्टर्न स्क्वायर ऑफ सूक वाकिफ में। मिस करने वाला मौका नहीं है क्योंकि ये सिर्फ 10 दिन के लिए ही आपके पास आए हैं। 18 जुलाई को ये वाइंड अप हो जाएगा यहाँ से। तो आपको करना क्या, इस वीकेंड टाइम निकाल के जाना है और बहुत सारे मैंगो लेके आने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वैरायटी आपको मिलने वाली है पाकिस्तान की डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आई हुई, उसमें इंक्लूडेड है चौंसा, अनवर रतौल, सिंदरी एंड ऑल्सो दशहरी। तो ये सब वैरायटी आपको यहाँ मिलेगी। देखिए, मजेदार वीकेंड जाएगा, इंजॉय कर सकते हैं। मैंगो के अलावा आप मैंगो से बनी हुई बहुत सारी क्यूजींस भी इंजॉय कर सकते हैं। उसमें जैसे आप पानी पूरी कह लीजिए या डोसा कह लीजिए, मैंगो मैंगो बर्गर, मैंगो चिकन, सब कुछ आपको वहां मिलेगा अंडर वन रूफ। तो करना क्या है, इस वीकेंड जाना है, इंजॉय करना है। टाइमिंग्स आपको मैं बता रही हूँ, 4 PM से 10 PM तक रहेगा थ्रू आउट द ड्यूरेशन। मैंगो एक ऐसी चीज है ना जो खाने से ना आपके फेस पे ऐसे खुशी आ जाती है ना, तो आपको वहां बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल डेलिकेसीज भी मिलेंगी। एंड अगर आप जाना चाहते हैं, जरूर जाइए अपनी फैमिली के साथ, मनाइए मैंगो वीकेंड इस वीकेंड को और इंजॉय करिए। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101 इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है?
3: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं आप, यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। यू डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
2: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोलडाल। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: Hey! Basantin, kutto ke saamne mat nachna!
5: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
6: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: మిర్చి హెల్ప్ లైన్.
1: मिर्ची हेल्प लाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं अपने पौधे को पानी दे देकर थक गया हूँ, पर पौधा बड़ा ही नहीं हो रहा, क्या करूँ?
1: अरे गोचू, तो तेरे को किसने बोला था कि आर्टिफिशियल पौधा ले?
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस.
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983. इट्स

हे कतर, अगर आपके पास भी वो टैलेंट है, अगर आपके पास भी वो एक है ऐसा एक्स फैक्टर है जिससे जो आपको सबसे अलग करता है, तो आपके लिए एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म लेके आई जहाँ आपको मौका मिल रहा है अपने आप को प्रूव करने का। जी हाँ, चाहे वो एक्टिंग हो, डांसिंग हो, स्टोरी टेलिंग हो, सिंगिंग हो, या फिर उल्टा पुल्टा कुछ काम करने की इच्छा हो, या स्टैंड अप कॉमेडियन करने की बात हो, मिमिक्री करने की हो, या कुछ भी ऐसी चीज जो आपको अलग बनाती है सबसे, अगर आप में वैसा कुछ टैलेंट है तो आपके लिए एक सुनहरा मौका लेके आई हूँ। मैं जी आपको दे रहा है एक ऐसा मौका जहाँ पे कतर्स गॉट टैलेंट में आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते। सारी डिटेल्स आपको आने वाले टाइम में बताऊंगी, अभी कुछ नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, आप हमें फॉलो करिए, यानी कि मिर्ची पान कतर को फॉलो करिए, क्योंकि वहां पे आपको मिलने वाली है वो सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कतर्स गॉट टैलेंट, और आप अपडेटेड रहेंगे। और उसके अलावा आपको मिलेगी ढेरों सारी इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो बस अपने टैलेंट को ज्यादा छुपा के रखिए मत, क्योंकि समय आ चुका है अपने टैलेंट को दिखाने का और बताने का लोगों को कि आई एम द वन, जो मैं कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते। तो बस रेडी हो जाइए और सुनते रहिए हमें, यानी कि 89.6 मिर्ची वन को। इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. Na virtuala murga.
1: Milci, murga. Murga. हेलो,
2: इज दैट वर्षा?
1: हु इज दैट?
2: वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ। एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारे गम पा।
1: क्या नाम बताया आपने?
2: धारे गम पा। हमारा ये रियलिटी शो है। मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
1: थोड़ा बहुत गा लेती
2: हैं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर धारे गम पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
1: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
2: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
1: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
2: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी। आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए। ऊ

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सर। स्टार्ट
1: मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊँचाइए ऊँचाइए।
1: ओ
0: तेरा तेरा तेरा सुरूर, एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा।
1: oh
2: लेकिन
1: अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
3: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
5: दोनों मिलेगा।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

अगर आप भी सोच रहे हैं कि बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज कहाँ लेके जाएं जहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज हो और बहुत मजेदार हो एंड एंट्री बिल्कुल फ्री हो, वेल मैं ऐसी ही जगह आपको बताने वाली हूँ जो बच्चों के साथ जाओगे टोटली फ्री है एंड इट इज 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम, जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज है बच्चों के लिए एंड आपको वहाँ पे गेम्स, चैलेंजेस, हैंड्स ऑन फन डिजाइन फॉर ऑल एज ग्रुप्स आपको मिलेगा एंड ऑल्सो इसका जो टाइमिंग है दैट इज संडे, मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे 9 AM टू 7 PM एंड ट्यूजडे इट्स क्लोज्ड, सो थर्सडे 9 AM टू 9 PM, फ्राइडे इट्स 1:30 PM टू 7 PM. तो जाना का 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम में, जहाँ पे ये एक्टिविटीज टोटली फ्री है, बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि एकदम नई नई एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, बच्चे भी खुश, आप भी खुश, क्या चाहिए भाई, वीकेंड भी आपका मजेदार हो जाएगा. अगर आप वीकडे में भी जा रहे हैं तब भी जा सकते हैं. स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 & Hot.

कतर में रहते हुए अगर आपने ये एक लग्जूरियस एग्जीबिशन नहीं देखी तो आपने कुछ नहीं देखा। मैं बात कर रही हूँ तीव अल हजम 13th एडिशन की। जी हाँ, जो 4 जुलाई को एंड हो जाएगा, इस वीकेंड होने वाला है एंड, उससे पहले आपको जरूर जाना चाहिए। जाते ही जो आपको तरह तरह की खुशबुएं आएंगी और वो लोग जो एक ब्रांड के लिए लंबी लंबी लाइनों में कतार में खड़े हैं एक ब्रांड को खरीदने के लिए, वो जज्बा, जो इंथुजियाज है, जो जील है लोगों में उस पर्टिकुलर ब्रांड को खरीदने का, उस पर्टिकुलर खुशबू को अपने पास आमंत्रित करने का, जो एक जज्बा है ना लोगों में, वो एक अलग लेवल है भाई। परफ्यूम के साथ प्यार यहाँ भी देखने को मिलता है। मेरी मानिए, जाइएगा जरूर, एंजॉय कर सकते हैं इस वीकेंड, और वहाँ पे खाने के भी ऑप्शंस बहुत अच्छे अच्छे हैं। उसके अलावा परफ्यूम एक ऐसी चीज होती है ना जो लगाने के बाद आप उसको हमेशा जहन में रखते हैं, हमेशा आपको याद रहता है कि मैं अपनी लाइफ के उस दौर में वो परफ्यूम लगाती थी और वो खुशबू मुझे आज अगर मिल जाए तो मेरे को वो और अपना जिंदगी का याद आ जाएगा। तो बस ये एक ऐसी परफ्यूम की खासियत है। तो लाइए परफ्यूम खूब सारे और इस वीकेंड एंजॉय करिए परफ्यूम्स के साथ, और सुनते रहिए मुझे यानी कि मिस ईशा को ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 एंड हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची इट्स हॉट।
7: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
0: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
8: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
9: खूब मिलेगा,
10: मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है, बाकी सब बातें बाद में, लेकिन ये लाइन जो है ना ये बहुत ज्यादा दिल को लगती है। समय सच्ची में बहुत बलवान होता है। इसीलिए शक्तिशाली होता है क्योंकि समय हमें सिखाता है किस तरीके से हर एक सिचुएशन से हमें उभरना है, हर एक सिचुएशन में किस तरीके से हमको अपने आप को हील करना है, ये सब समय रहते ही हमें समझ में आता है। बाकी समय हो चुका है हमारा भी जाने का, बहुत समय समय कर लिया। आप लोगों को बताऊंगी वो सारे इवेंट्स एग्जीबिशंस अगले हफ्ते की, और इस हफ्ते सारे वीकेंड्स में जो भी प्लानिंग मैंने आपको दी है जाके इंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ। होप आपका वीकेंड बहुत अच्छा गया हो, और अगले वीकेंड आपको मिलूंगी सेम प्लेस सेम टाइम पे। तो तब तक के लिए लेती हूँ आपसे अलविदा, टाटा बाय बाय, टेक केयर। अब मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते, सो स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन 89.6 मर्शिवान इट्स हॉट। Original and better than our rivals.

0: Mercy Helpline?
1: Hi, Anjali. Mercy Helpline. Ball.
0: You know, I love twinning. But mera BF matching kapde kabhi nahi pehenta. Wo har baar na bol deta hai. Kya karun?
1: Hi. To galat thodi bol raha hai. Ladke skirt mein thodi acche lagte hai, Anjali.
2: Mast joke, Maran. Ya has raha halkat has.
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983 इट्स

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: हर फ्राइडे बॉलीवुड हमें बताता है कि उसने इस हफ्ते क्या बनाया, लेकिन हर मंडे ऑडियंस बॉलीवुड को बता देती है कि उसने क्या रिजेक्ट किया। और शायद इसलिए हिंदी सिनेमा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर खड़ा है। आज सिर्फ बड़े स्टार्स काफी नहीं है, सिर्फ बड़े बजट्स काफी नहीं है, सिर्फ नॉस्टैल्जिया भी काफी नहीं है। अच्छी फिल्म हो तो लोग उसे ढूंढ ही लेते हैं, लाइक मैं वापस आऊंगा। बुरा रीमेक हो तो लोग उसे छोड़ भी देते हैं। और जो चीज कभी सिर्फ पोस्टर्स और प्रमोशंस डिसाइड करते थे, आज वो प्लेलिस्ट, रिव्यूज और वर्ड ऑफ माउथ डिसाइड करते हैं। यानी बॉलीवुड बदल रहा है, लेकिन उसे बदल कोई और नहीं रहा, आप बदल रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू ड्रॉप ऑफ द मिर्ची टॉप 20। मैं हूं आपका ट्रैवल बडी ऑन दिस राइड सुरेन सुंदरम। एंड वो मंजर आ गया है जहां एक गाने को 13 महीनों बाद शायद हम अलविदा कहने जा रहे हैं। हर जेनरेशन अपनी मोहब्बत को एक गाने में हमेशा के लिए कैद कर लेती है। शायद इस जेनरेशन के लिए वो है सैयारा। Not just another hit song, ये वो गाना था जिसमें लाखों लोगों ने अपना प्यार, अपना इंतजार और अपना टूटना छुपा दिया। वक्त बदलेगा, महीने बदलेंगे, पर सालों बाद कहीं दिल के किसी कोने में एक सैयारा छुपा होगा।
4: नंबर 20।

कभी कभी बॉक्स ऑफिस एक बहुत खूबसूरत बात सिखा देता है। मैं वापस आऊंगा उसका जीता जागता सबूत है। फिल्म ने शोर मचाकर नहीं, लोगों का दिल जीत कर अपनी जगह बनाई। और शायद हिंदी सिनेमा भी धीरे धीरे कुछ और सीख रहा है। बहुत सालों तक बॉलीवुड ने हमें एक ही तरह की हीरोइन दिखाई, एक तरह का चेहरा, एक तरह की बॉडी, जिसे प्यार सिर्फ कुछ लोगों को ही सूट करता हो ऑन द स्क्रीन। फिर आई अंजलि आनंद, टीवी की सबसे ब्रिलियंट परफॉर्मर्स में से एक, और फिर उन्हें मिली एक फिल्म।

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, डायरेक्टेड बाय करण जौहर हिमसेल्फ। अब उसमें अंजलि का रोल छोटा था, लेकिन वो रोल बन गया बेहद यादगार। एंड अब धमाल 4 में वो सिर्फ फ्रेम का हिस्सा नहीं है, वो लव स्टोरी का हिस्सा है। और मुझे लगता है ये कास्टिंग सिर्फ एक कास्टिंग नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि हीरोइन होने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट्स नहीं, परफेक्ट ऑनेस्टी चाहिए होती है। और अंजलि में वो ऑनेस्टी साफ नजर आती है। सच कहूं, अगर हिंदी सिनेमा वाकई बदल रहा है तो उसकी पहचान उन चेहरों से होगी जिन्हें देखकर ज्यादा लोग कहेंगे ये तो हम जैसे लगते हैं, ये तो हम ही हैं। नंबर 18 पर इस हफ्ते एक नई एंट्री हो रही है, मराठी सेंसेशन संजू राठौड़ की आवाज में रितेश देशमुख और अंजलि आनंद पर पिक्चराइज। दिस वन इज अ रोमांटिक सॉन्ग एंड इस गाने का नाम है साड़ी, फ्रॉम धमाल 4। नंबर 18।

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है, तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा है, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करनी?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े होकर तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले जा रहा
0: है। उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख के क्यों नहीं आता आज? क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, मेरी
0: मेरी मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लो भाई। मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपने नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot. A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn. अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
4: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
5: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
7: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। नंबर 17।

व्याह करवा दो जी, इस हफ्ते नंबर 17 पर है, लेकिन मेरी नजर गाने पर नहीं, हमेशा उसके टाइटल पर ही जाती है। है जवानी तो इश्क होना है, और मुझे सच में लगता है कि बॉलीवुड को फिर से लंबे टाइटल्स याद आने लगे हैं। देखो, हम 90s वाले लोग एक अजीब सी लग्जरी के साथ बड़े हुए थे। उस जमाने में फिल्म के टाइटल सिर्फ नाम नहीं होते थे, पूरे के पूरे इमोशंस होते थे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हमारा दिल आपके पास है, कभी खुशी कभी गम, एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट टू ऑफ माय फेवरेट्स, बोथ ऑफ देम वर सलमान खान फिल्म्स। नंबर 1 पर

0: और ऐसा लगता था जैसे पोस्टर देखने से पहले ही फिल्म आपसे बात कर रही हो। फिर सिंप्लिसिटी ट्रेंड बन गई। अल्फा, एनिमल, सिकंदर, धुरंधर, एक शब्द, एक पंच। सर्च करने में वैसे आसान भी होता है, लेकिन याद रहने के लिए सिर्फ छोटा होना काफी नहीं होता। शायद इसलिए 25-30 साल बाद भी हम उन पुराने टाइटल्स को आज भी पूरा बोलते हैं, एक भी लफ्ज नहीं छोड़ते, क्योंकि वो टाइटल्स नहीं थे, वो बॉलीवुड की वोकैबुलरी बन गए थे। नंबर 16 पर इस हफ्ते वी हैव गॉट द टू वर्ड्स कॉल्ड भूत बंगला, जिसका गाना तू ही दिसदा इज ट्रैकिंग वेल विद द ऑडियंस। लेकिन लंबी टाइटल वाली फिल्मों को याद करते हुए, हियर इज अ मॉडर्न डे फिल्म विद अ लॉन्गेस्ट टाइटल, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। उसका शायद सबसे पॉपुलर एंड येट सबसे खूबसूरत गाना मोहित चौहान इन सुपर फॉर्म, ये है पीलू। प्रीतम दा का म्यूजिक, इरशाद भाई का लिखा, बनाते इसको इस हफ्ते का रिवाइंड।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: अरे चाटा क्यों मारा?
4: चला पैसे निकाल।
3: किस बात के पैसे?
4: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
5: क्या बोला तूने?
3: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
6: क्या जोक मारा भाई?
3: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
4: कौन सा?
3: चाटा लगा
4: लगा
7: मिर्ची इट्स हॉट

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: 89.6 Mirchi One. It's hot.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Number 15.
3: Oh, look at

फॉर मी ये कॉकटेल का सबसे हल्का गाना है, मे बी दैट्स व्हाई वल्ला इस हफ्ते भी नंबर 15 पर है। और कॉकटेल 2 को देखकर एक बात काफी अच्छे से समझ आ जाती है, हिट गाना बनाना मुश्किल है, लेकिन उससे भी मुश्किल है एक्साइटमेंट को जिंदा रखना। आजकल बॉलीवुड में फिल्म अनाउंस करना बहुत आसान हो गया है, मोशन पोस्टर, टाइटल रिवील, टीजर, सोशल मीडिया ट्रेंड, और फिर होता है इंतजार, अ लॉन्ग वेट। नाउ यश की टॉक्सिक को ही देख लो, पहले एक रिलीज डेट आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अब फाइनली 26 अगस्त 2026 को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। एंड देन यू गॉट सलमान खान की मातृभूमि। दो गाने आ गए थे वैसे मिर्ची टॉप 20 पर, फिल्म की बातें भी शुरू हो गई थी, लेकिन आज अगर आप सलमान खान को गूगल करोगे तो ज्यादा डिस्कशन उनकी अगली फिल्म का हो रहा होता है, वेयर ही इज वर्किंग विद अ साउथ इंडियन डायरेक्टर कॉल्ड वामशी पेडपल्ली। अजीब है ना, कभी कभी लगता है बॉलीवुड फिल्म बनाना नहीं एक्सपेक्टेशन मैनेज करना हार गया है, क्योंकि हाइप की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। अगर आप वक्त पर रिलीज नहीं कर पाए, ऑडियंस रुकती नहीं, वो अगला ट्रेलर देख लेती है, अगला गाना सुन लेती है, अगली फिल्म का इंतजार करने लगती है। लेकिन नंबर 14 पर एक टिपिकल समर कॉमेडी बॉलीवुड फिल्म धमाल 4 का ये भोजपुरी फ्लेवर वाला फुल ऑन देसी गाना चटनी। नंबर

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
2: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
1: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
3: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
1: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
4: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
5: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 13.

ये जो सुना ना अभी, ये इस हफ्ते की नई एंट्री है, नंबर 12 पर, इस कमीना 2.0। अबे क्या है ये? देखो जो मैं कहने जा रहा हूँ वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होने वाला है, क्योंकि जब म्यूजिक अच्छा लगता है ना, मैं दिल से उसकी तारीफ करता हूँ, और जब म्यूजिक बकवास होता है तो उसे भी उतनी ही ऑनेस्टी से कॉल आउट करता हूँ। यार एक क्लासिक गाने को रीमेक करना गुनाह नहीं है, लेकिन उसे बिना फील के, वाइब के, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिना सब्सटेंस के रीमेक करना जरूर गुनाह है। ओरिजिनल इश्क अमीना सिर्फ एक हिट गाना नहीं था, उसमें शरारत थी, आइटम सॉन्ग होने के बावजूद एक अदा थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो बात ही नहीं है। देखो धुरंधर ने हमें सिखा दिया है कि अगर रीमेक्स बनानी ही है तो वो कैसे बनानी है।

धुरंधर ने सिर्फ गाने उठाए नहीं, उसकी स्पिरिट को समझा। लेकिन यहाँ सिर्फ एक चीज जो है वो सही की इन लोगों ने, सोनू निगम और अलका याग्निक की असली आवाज को बरकरार रखा, बाकी सब इतना ऑर्डिनरी है भाई। और अफसोस इसलिए भी है क्योंकि बेबी डो डाई डो का ट्रेलर जेन्युइनली मुझे एक्साइटिंग लगा था। एक डेफ और म्यूट असैसिन, क्या कमाल का प्रमाइस है। लेकिन कभी कभी एक गाना फिल्म की एक्साइटमेंट को बना भी देता है और उसे बिगाड़ भी देता है। कॉकटेल 2 ने पहला वाला काम किया था, एक के बाद एक चार्ट बस्टर्स, और उन्हीं में से एक इस सीजन का सबसे खूबसूरत लव सॉन्ग है। नंबर 11 पर दिस इज द किंग अरिजीत सिंह विद द सॉन्ग तुझको। नंबर 11।

0: ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
1: सर मैंने IIM में जाने के लिए बहुत ट्राई किया, 2 साल कोचिंग भी करी, फिर भी नहीं हो पा रहा, क्या करूं?
2: अरे तू ये सब मत कर, तू गेट नंबर 2 से जा, वो खुला ही होता है और मैं वहीं से जाता हूँ।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
4: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Sureen ke saath, only on Mirchi. It's hot. Number 10.

0: गुरु रंधावा के हिट फैक्ट्री से एक और चार्ट बस्टर केयर सिर्फ दो हफ्तों में टॉप 10 में आ गया है। और ऑनेस्टली अगर परफॉर्मर्स की बात चली है तो सनी देओल का नाम उस लिस्ट में हम कैसे ना लें। हाल ही में उनकी एक फिल्म इक्का का टीजर मैंने बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखा और उसमें सनी देओल को फिर से लॉयर के रूप में देखते ही मुझे एक बात समझ आ गई। अगर आप 2005 के बाद पैदा हुए हैं ना तो शायद तारीख पे तारीख आपके लिए सिर्फ एक मीम होगा, लेकिन मीम तो वो बाद में बना, पहले वो सिनेमा था। 34 साल पहले दामिनी नाम की एक फिल्म में सनी देओल ने एक अदालत के सीन को इतना आइकॉनिक बना दिया कि उसके डायलॉग्स आज भी लोग कोट करते हुए नहीं थकते।
1: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। कानून के दलालों ने तारीख को इंसाफ के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है मिलोट। दो तारीखों के बीच अदालत के बाहर ये कानून का धंधा करते हैं, धंधा।
0: आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और सिर्फ तारीख पे तारीख ही नहीं, 2.5 किलो का हाथ भी इसी फिल्म की देन है ना। इक्का का टीजर उस याद को भी सल्यूट कर रहा है, और तब समझ आता है कि कुछ परफॉर्मेंसेस फ्राइडे से संडे तक नहीं जीती, 3 दशक तक जिंदा रहती हैं, और उनके डायलॉग्स 30 साल बाद भी हमारे दिल में जिंदा रहते हैं। और कुछ फिल्मों का सफर थिएटर्स में 30 दिन भी मुश्किल से कटता है। है जवानी तो इश्क होना है इज डाउन टू मे बी 1 or 2 शोज एट द सिनेमा हॉल्स, लेकिन उसका साउंड ट्रैक अभी भी लड़ रहा है, ये जंग लड़ रहा है। इस हफ्ते नंबर 9 पर ये है वाओ।
2: नंबर 9 वाओ।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मिल गया
5: मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
3: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
5: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाए को मुड़ने के लिए, जब दाए मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम कि छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
3: क्या तुझे पागल लगा?
5: नहीं वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
3: क्या कहना है?
5: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू फोन मत रखना। हेलो, चारू में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। I love you, but मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, I love you, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत माने यार, थोड़ा सा
3: मैंने सोचा यार रिक्शा
5: मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
1: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट।
4: Only on Mirchi. It's hot. Number 8.

आई हैव नेवर केयर्ड अबाउट बॉक्स ऑफिस नंबर्स. मुझे सच में कभी फर्क नहीं पड़ा. अगर पड़ा होता तो पान सिंह तोमर, कहानी, तनु वेजमनु और क्वीन जैसी फिल्में मैं थिएटर्स देखने कभी नहीं जाता. बट 2026 में नंबर्स हैव स्टार्टेड मीनिंग समथिंग, राइट? कॉकटेल 2 ने अभी हाल फिलहाल ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. एक वक्त था जब ये बड़ी न्यूज हो सकती थी, आज ये बस एक नंबर लगता है. और शायद बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, हमने फिल्मों को देखना कम, उन्हें कंपेयर करना ज्यादा शुरू कर दिया है.

गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर इज ऑन नंबर 6, एक ऐसी फिल्म जो 3,000 करोड़ के फिगर्स टच कर रही है। एंड देन दूसरी तरफ वो फिल्में जो शायद ओपनिंग वीकेंड की हेडलाइंस ना जीतें, लेकिन वक्त जरूर जीत लेती हैं। सबसे बड़ा नुकसान कलेक्शंस का नहीं हुआ, उस बीच वाली फिल्म का हुआ। वो फिल्म जो ना फ्रेंचाइज थी, ना सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा थी, ना उसके पास 500 करोड़ का बजट था, बस एक ईमानदार कहानी होती थी उन फिल्मों में और उसे कहने का हौसला होता था। सच कहूं, मुझे हिंदी सिनेमा का वही चेहरा सबसे ज्यादा याद आता है, क्योंकि उसी ने हमें कुछ ऐसी फिल्में दी हैं जिन्हें हम बॉक्स ऑफिस से नहीं अपने दिल से याद रखते हैं। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग एक ऐसी फिल्म से है, दम लगा के हायशा अपॉन की आवाज में। दिस इज मोमो के धागे। Special request song. Yeah.

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी.
3: अरे चाटा क्यों मारा?
4: चला पैसे निकाल.
3: किस बात के पैसे?
4: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं.
5: क्या बोला तूने?
3: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ.
6: क्या जोक मारा भाई?
3: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
4: कौन सा?
3: चाटा लगा
4: भाई लगा.
7: मिर्ची, इट्स हॉट.
8: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
9: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 5.

0: धुरंधर टू का आरी आरी जब जब सुनाई देता है कहीं भी, उसके साथ धूल मिट्टी और देसी स्वैगर की वो खुशबू भी साथ आती है। लेकिन बॉलीवुड की एक और पुरानी आदत है और उसे बॉलीवुड ने कभी छोड़ा ही नहीं, दुनिया भर की जुबानों से जो बे इंतहा इश्क है। कभी हम स्पेन चले जाते हैं,
1: tan de repente y da sentido toda mi vida con tu querer.
0: तो कभी हमारा रंग ही बेशरम हो जाता है।

कभी श्रीलंका की भाषा सिनेला में हम मणिके सुन लेते हैं। और प्रीतम दा तो शायद इस गेम के सबसे बड़े प्लेयर हैं। रिमेम्बर तेरा होने लगा हूं।

अंग्रेजी लव्स इंडियन मेलोडी. फनीली इनफ बॉलीवुड कभी फॉरेन लैंग्वेज में गाने नहीं बनाता, वो सिर्फ हिंदी गानों को एक पासपोर्ट दे देता है. गाना चाहे स्पेन चले जाए, इटली घुमाए या फिर श्रीलंका से होकर निकले, दिल उसका हमेशा हिंदी में ही धड़कता है. और शायद इसलिए ये गाने फैशनेबल लगते हैं, ग्लोबल लगते हैं, लेकिन टोटली अपने लगते हैं. इस हफ्ते नंबर 3 पर कॉकटेल 2 का वो समर एंथम जिसमें इटली का रंग है और बॉलीवुड का दिल है. दिस इज राघव चैतन्य विद माशुका. नंबर 3.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: आमिर खान इतनी सारी फिल्में और हर फिल्म में एक अलग फिजिक। What is the ultimate fitness tip?
4: I know everyone says this, but I can't stress how important it is to be regular in your workout. And along with that, for the best results, you need to have a very balanced and healthy diet. आमतौर पे लोग high protein diet करते हैं. You know, that's not healthy. The body needs proteins, but also needs carbohydrates. It needs fat. It needs everything. So we must have a balanced diet and a healthy diet and rest. You have to sleep well. You have to rest well.
3: Sleep well. ओहो हो हो, फिर तो फिट होना मुश्किल है आमिर खान। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
6: FM मिर्ची वन इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
9: नंबर टू।

0: सिर्फ चार ही हफ्तों में ऊंचा लंबा कद हैज क्लाइम्ब टू नंबर 2। पुराना हुक, नई पैकेजिंग एंड मुझे आनंद राज आनंद साहब के लिए इतनी खुशी हो रही है। उन्होंने कुछ बड़ी फिल्में साइन की हैं एंड द मैन डिजर्व्स इट ऑल। और एक बार फिर बॉलीवुड ने साबित कर दिया है कि सीक्वल सिर्फ फिल्मों के नहीं होते, गाने भी दूसरी जिंदगी जी लेते हैं। लेकिन एक सीक्वल ऐसा भी आ रहा है जहां एक्साइटमेंट फिल्म से ज्यादा उसके म्यूजिक को लेकर है, आवारापन 2। और शायद उसकी वजह यह है कि आवारापन को कल्ट उसकी कहानी ने नहीं, उसके म्यूजिक ने बनाया था। दो गाने ऐसे आए थे जो कभी किसी की प्लेलिस्ट से बाहर ही नहीं निकल पाए।
1: तो फिर आओ मुझको सताओ।
0: And then the one that became a timeless heartbreak classic.

हर सीक्वल पहली फिल्म से बड़ा बनना चाहती है, लेकिन आवारापन 2 को सिर्फ एक चीज मैच करनी है, अपनी वो साउंडट्रैक। और यकीन मानिए, वो एवरेस्ट चढ़ने जैसा चैलेंज है, क्योंकि कुछ एल्बम्स सिर्फ हिट नहीं होती, वो एक जेनरेशन की यादों में परमानेंटली डाउनलोड हो जाती हैं। अगर आवारापन 2 ने वही एहसास फिर से जिंदा कर दिया तो मिलेनियल्स सिर्फ टिकट्स नहीं खरीदेंगे, वो अपनी यादें दोबारा जीने जाएंगे। लेकिन फिलहाल पिछले 20 हफ्तों से यादें नहीं, हिस्ट्री लिख रहा है एक और साउंडट्रैक। 20 हफ्ते ऑफ बीइंग द अनडिस्प्यूटेड नंबर वन, रील से लेकर शादियों तक इंडिया का नंबर वन गाना। जैस्मिन सैंडलर्स, मधुबंती बागची, शरारत करने वाले हैं फिर से। नंबर वन।

0: इतने गाने, लेकिन इनमें से कितने अगले हफ्ते तक रह पाएंगे और कितने सालों बाद भी साथ रह जाएंगे, इस सफर का हिसाब किताब हम ही रखते हैं। लेकिन इस बार का हिसाब होता है खत्म। शरारत कंटिन्यूज टू बी द नंबर वन सॉन्ग। मिर्ची टॉप 20 विल बी बैक अगेन विद अनदर एपिसोड। तो अगली बार तक सिरे ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
3: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
2: मैं एक लड़के को एक महीने से डेट कर रही थी, पर मुझे आज पता चला कि वो मैरिड है, क्या करूं?
3: अरे अच्छा है ना, एक बार जो उसने कमिटमेंट कर लिया तो दूसरी बार भी कर ही लेगा ना।
4: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
5: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट जब

0: मिर्ची घड़ी में बज गए शाम के 6 एंड यू एंजॉय क्लब मिर्ची। मिर्ची घड़ी में बज गए शाम के 6 एंड यू एंजॉय क्लब मिर्ची।
1: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
2: Ladies and gentlemen, fasten your seatbelts and wait for the no smoking sign. We are gonna go. We are gonna go. We are gonna go.

मिर्ची। हेलो पीपल, वीकेंड फाइनली नॉक कर रहा है और क्लब मिर्ची ऑफिशियली ऑन हो चुका है। बाहर बारिश की बूंदे, अंदर बेस की धूम, तो वॉल्यूम फुल करो, मूड कूल करो और डांस फ्लोर हो या बोर्डम, गाड़ी हो या बालकनी, आज रात सिर्फ एक ही रूल है, नो रूल्स ओनली गुड वाइब्स। मैं हूँ मिर्ची ऑयोंटिक एंड विद मी इज डीजे रिचर्ड। अगले कुछ घंटों तक पार्टी नॉनस्टॉप, हिट्स बैक टू बैक और वर्ल्ड कप फीवर के साथ बारिश वाली मस्ती भी। वेलकम टू क्लब मिर्ची।

वीकेंड का सीन सिंपल है, फोन साइलेंट, वरीज ऑफलाइन और म्यूजिक फुल वॉल्यूम, बारिश को बैकग्राउंड डांसर बना दो और खुद बन जाओ टुनाइट्स मेन कैरेक्टर। क्लब मिर्ची इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। लेट्स गो।

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: A ring for the newly married? Cute little bangle for the newborn?
2: Arre yaar, holiday season is here aur phir wahi gifting ka tension. To phir Malabar Gold and Diamonds, golden summer ke saath, buy your free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. Aur suno, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष महापुरुष
4: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन
6: इट्स हॉट
7: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो

वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर चाय के साथ पकोड़ा चल रहा है तो उसके साथ हमारा बीट्स भी जरूरी है, और अगर आप रोड पे हो तो रेन को एंजॉय करो, स्पीड को नहीं। क्लब मिर्ची में अभी पार्टी बस गर्म ही हो रही है। डीजे और चटन मिर्ची और ओम टिका विद यू टुनाइट, लेट्स गो अगेन।

फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो अगर आज रात किसी गोल के बाद पड़ोस से जोर का चीयर सुनाई दे, डोंट पैनिक। फुटबॉल लवर्स आर सिंपली लिविंग द बेस्ट लाइफ, और हम भी ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: अरे चाटा क्यों मारा?
4: चला पैसे निकाल।
3: किस बात के पैसे?
4: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
5: क्या बोला तूने?
3: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
6: क्या जोक मारा भाई?
3: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
4: कौन सा?
3: चाटा लगा
4: लगा।
7: मिर्ची, इट्स हॉट।
8: अर्ज किया है
9: इरशाद

फीवर भी फुल ऑन है। हर पास पे टेंशन, हर गोल पे सेलिब्रेशन, और हर सेलिब्रेशन के लिए एक ब्लॉकबस्टर गाना तो बनता है। तो सीट बेल्ट बांधो, वॉल्यूम बढ़ाओ, क्लब मिर्ची कंटिन्यूज विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

वैसे पार्टी सिर्फ रेडियो तक ही क्यों? बिहाइंड द सीन्स क्रेजी रील्स और मस्त कंटेंट के लिए फॉलो करना मत भूलना डीजे रिचर्ड ऑफिशियल को। पार्टी कंटिन्यूज ऑन एयर भी और ऑनलाइन भी। क्लब मिर्ची इट इज विद मी मिर्ची और नोंतिका।

मॉनसून की रात नियॉन लाइट्स और फेवरेट गाने, इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो हो ही नहीं सकता। सो वेयर एवर यू आर वाइबिंग, बालकनी, टेरेस या लॉन्ग ड्राइव, क्लब मिर्ची इज योर परफेक्ट पार्टी पार्टनर। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका विथ यू, लेट्स गो।

Rainy nights are made for hot coffee, good company and even better music. अगर कंपनी नहीं है टेंशन किस बात की, क्लब मिर्ची है ना। डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योंटिका आपके पक्के दोस्त। लेट्स गो बेबी।

लाइफ को कभी कभी शफल पे छोड़ देना चाहिए, पता नहीं अगला सरप्राइज एक फेवरेट गाना हो या एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी। एंजॉय एवरी बीट विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है।
4: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं आप, यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
3: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑल
1: बॉलीवुड बोलडाल।
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bordal. Only on Mirchi. It's hot.
5: Our business is our business. None of your business.
6: पर दीदी, our entertainment.
3: आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं Mirchi. It's hot.
1: Bollywood, Bordal.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bordal. Only on Mirchi. It's hot.
5: Our business is our business. None of your business.
6: पर दीदी, our entertainment is your entertainment.

मतलब सिर्फ रेस्ट नहीं, बेस्ट भी। डांस करो, गाओ या बस बारिश देखते हुए चिल करो। हम लेकर आए हैं नॉन स्टॉप हिट मशीन डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विद क्लब मिर्ची।

बारिश की स्मेल, फ्रेश प्लेलिस्ट और वीकेंड का थ्रिल, बस इसी कॉम्बो के लिए तो पूरा हफ्ता वेट करते हैं। अब डांस करना कंपलसरी है विद क्लब मिर्ची एंड डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल दिखा।

0: हेलो,
1: इज दैट वर्षा?
0: हु इज दैट?
1: वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारे एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारे गामा पा।
0: क्या नाम बताया आपने?
1: धारे गामा पा। हमारे ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
0: थोड़ा बहुत गा लेती
1: हूं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर धारे गामा पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
0: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
1: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
0: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
1: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी। आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए। ओ

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी, आपने बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सर। स्टार्ट
1: मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊँ चाहिए तेरा तेरा तेरा सुरूर। एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा लेकिन
1: अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: अर्ज किया है
5: इरशाद,

0: IB Payments ka wah tarika. With IB, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IB app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IB, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: Ja Simran, ja jeere apni zindagi. Ja beta, ja.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
3: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
4: हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन।
6: इट्स हॉट
7: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
8: ऑन अ राइड
9: क्लब मिर्ची।

बारिश का मौसम है, कभी रोमांटिक कभी ड्रामेटिक, लेकिन प्लेलिस्ट हमारी सिर्फ फैंटास्टिक, सो डोंट टच दैट डायल, क्योंकि अभी पार्टी का लेवल और भी हाई होने वाला है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंतिका विद यू एंड दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: अरे चाटा क्यों मारा?
4: चला पैसे निकाल।
3: किस बात के पैसे?
4: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
5: क्या बोला तूने?
3: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
6: क्या जोक मारा भाई?
3: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
4: कौन सा?
3: चाटा लगा
4: भाई लगा।
7: मिर्ची, इट्स हॉट।
8: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
9: 89.6, 89.6. Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go
7: on a ride.
0: Club Mirchi with Oyon Deka and DJ Richard.

फेरी लाइट्स चल रही है या कार की विंडशील्ड पे बारिश नाच रही है तो साउंडट्रैक भी प्रीमियम होना चाहिए। वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची, लेट्स कीप द वीकेंड अलाइव विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो ओन्ली ऑन द क्लब बेबी।

एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज स्पीड से ज्यादा सेफ्टी को इम्पोर्टेंस दीजिए। वेट रोड्स पे ब्रेक्स को टाइम लगता है लेकिन एक्सीडेंट्स को नहीं। सीट बेल्ट ऑन रखिए, फोन साइड में रखिए और सेफली घर पहुंचिए। पार्टी बाद में भी होती रहेगी। डीजे रिचर्ड मिर्ची ऑयोमटिक आते हैं ना क्लब मिर्ची लेके हर हफ्ते।

म्यूजिक का वॉल्यूम हाई हो सकता है लेकिन स्माइल उससे भी हाई होनी चाहिए। वीकेंड है बॉस, डांस करो, गाओ, बारिश एंजॉय करो और क्लब मिर्ची के साथ गुड वाइब्स स्प्रेड करते रहो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विद यू टुनाइट।

वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर चाय के साथ पकोड़ा चल रहा है तो उसके साथ हमारा बीट्स भी जरूरी है, और अगर आप रोड पे हो तो रेन को एंजॉय करो, स्पीड को नहीं। क्लब मिर्ची में अभी पार्टी बस गर्म ही हो रही है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योम टेक आउट विद यू टुनाइट, लेट्स गो अगेन।

सक्सेसफुल हो या कैंसिल, प्लेलिस्ट कभी डिसअपॉइंट नहीं करती। दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योन टिकट। सो वेदर यू आर एट अ हाउस पार्टी, कैफे या अपने रूम में सोलो कॉन्सर्ट कर रहे हो, क्लब मिर्ची इज राइट देयर विद यू। लेट्स गो।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
1: सर मैंने IIM में जाने के लिए बहुत ट्राई किया, 2 साल कोचिंग भी करी, फिर भी नहीं हो पा रहा, क्या करूं?
2: अरे तू ये सब मत कर, तू गेट नंबर 2 से जा, वो खुला ही होता है और मैं वहीं से जाता हूँ।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
4: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।
5: हेलो शॉप्स, आर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.
10: Ladies and gentlemen.

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

रात नियॉन लाइट्स और फेवरेट गाने, इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो हो ही नहीं सकता। सो वेयर एवर यू आर वाइबिंग, बालकनी, टेरेस या लॉन्ग ड्राइव, क्लब मिर्ची इज योर परफेक्ट पार्टी पार्टनर। डीजे रिचर्ड, मिर्ची ऑयो, दे गो विद यू, लेट्स गो।

बारिश का अपना स्वैग होता है भाई, कभी रोमांटिक कभी फुल फिल्मी, और हम लेकर आए हैं इसी वाइब के ब्लॉकबस्टर ट्रैक्स। कीप स्माइलिंग कीप ग्रूविंग विद डीजे मिर्ची और योंतिकांत क्लब मिर्ची।

का सीजन है, हर मैच एक इमोशन और हर गोल एक सेलिब्रेशन। टीम कोई भी हो, म्यूजिक सबका कॉमन लैंग्वेज है। लेट्स कीप द एनर्जी रोलिंग विद क्लब मिर्ची एंड डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंटिका।

कभी डांस फ्लोर पे स्टेप परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एटीट्यूड होना चाहिए 100%. सो फॉरगेट द मूव्स, बस फील द म्यूजिक. दैट्स द क्लब मिर्ची वे विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर डिका.

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा है, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है,
0: तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े हो गए, तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है, ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, एक केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरे,
0: मेरी मेरी मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लो भाई। मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे ही नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपना नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोलो कुकड़ू
1: कुकड़ू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
5: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
6: दोनों मिलेगा।
3: भारत का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
7: 89.6
3: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट
8: लेडीज एंड जेंटलमैन।

फीवर भी फुल ऑन है। हर पास पे टेंशन, हर गोल पे सेलिब्रेशन, और हर सेलिब्रेशन के लिए एक ब्लॉकबस्टर गाना तो बनता है। तो सीट बेल्ट बांधो, वॉल्यूम बढ़ाओ, क्लब मिर्ची कंटिन्यूज विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
3: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा, खूब मिलेगा,
4: मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
6: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go.

वीकेंड का मतलब सिर्फ रेस्ट नहीं, बेस्ट भी। डांस करो, गाओ या बस बारिश देखते हुए चिल करो। हम लेकर आए हैं नॉन स्टॉप हिट मशीन, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विद क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Hello, Sharps. Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba Ji se advice li to kehte hain.
2: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao, profit aayega.
1: Relative se advice slow to kehte hain.
3: Kaam ko time do, 25 ghante kaam karo, dark circles honge to future bright hoga.
1: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो। भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
4: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now 7070-7687.
5: Ladies and gentlemen.

0: बोला।
1: बारिश का मौसम है, कभी रोमांटिक कभी ड्रामेटिक, लेकिन प्लेलिस्ट हमारी सिर्फ फैंटास्टिक, सो डोंट टच दैट डायल, क्योंकि अभी पार्टी का लेवल और भी हाई होने वाला है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंतिका विद यू, एंड दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर, क्लब मिर्ची।

रेन प्लस फ्रेंड्स प्लस म्यूजिक इक्वल्स टू वीकेंड गोल्स. और अगर फ्रेंड्स बिजी है तो स्पीकर को बेस्ट फ्रेंड बना लो, साथ डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो का तो है ही कंपनी देने के लिए. लेट्स गो अगेन.

के बाद भी मिलते रहना यार फन रील्स बिहाइंड द माइक मोमेंट्स और एवरीडे मैडनेस के लिए फॉलो मी ऑयोंटिक ऑन सोशल मीडिया AYANTIKA. वीकेंड वाइब्स कंटिन्यू ऑन योर फीड टू. लेट्स गो. दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंटिक.

अपनी खिड़की खोलो और बारिश की हवा को फील करो, फिर वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा दो। कुछ मोमेंट्स को सिर्फ एंजॉय किया जाता है, एक्सप्लेन नहीं। डीजे रिचर्ड मिर्ची, ओयो दिखा विद यू ऑन क्लब मिर्ची।

सैटरडे नाइट हो या संडे चिल, एक बात फिक्स है, अच्छा म्यूजिक कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। और जब क्लब मिर्ची हो साथ तो मूड ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो ही जाता है। डीजे मिर्ची और योंतिका विद यू टुनाइट।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: मैं अपने पौधे को पानी दे देकर थक गया हूँ, पर पौधा बड़ा ही नहीं हो रहा, क्या करूँ?
2: अरे गोचू, तो तेरे को किसने बोला था कि आर्टिफिशियल पौधा ले?
3: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस।
4: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

सुन रिमाइंडर, अगर रोड्स पे वाटर लॉगिंग दिखे तो अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए, स्लो ड्राइव करिए, सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और फ्लडेड रोड्स को अवॉइड कीजिए। बारिश का मजा तभी है जब आप सेफली घर पहुंच जाए। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विद क्लब मिर्ची टुनाइट।

वीकेंड खत्म हो जाएगा लेकिन आज की मेमोरीज और ये गाने प्लेलिस्ट में हमेशा रहेंगे. सो लाफ अ लिटिल लाउडर, डांस अ लिटिल लॉन्गर और हर बीट को दिल से फील करो. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विथ यू टुनाइट.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हेलो भाई राज, एक ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं,
2: बोल कौन रहा है?
3: नहीं, मुझे ये बताओ भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में? कितने पैसे कमाते? तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत में पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताना चाह, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
2: हाँ, कटी। कौन बोल रहा है?
3: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा है तू पर्स में मेरी मेहनत की। तूने ऐसी
2: तूने जेब काटी,
3: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
2: तो मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
3: हाँ, तो मैं क्या करूँ उसका?
2: जरा वापस दे दो यार।
3: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मेहनत पे पानी फिरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है। मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा? वो कौन देखेगा आके? कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने।
2: कर दे, मैं तो कर दूंगा।
3: एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पैसा तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
2: क्या करूं बताओ?
3: मेरे साथ बोलो कुकड़ो कु।
2: सॉरी
3: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था? मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ो कु।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: ए पगला,
6: हाउ इज द जोश?
7: हाई सर,
6: हाउ इज द जोश?
7: हाई सर।
4: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
8: बैक टू बैक
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
4: FM, Mirchi 1. It's hot.
10: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर चाय के साथ पकोड़ा चल रहा है तो उसके साथ हमारा बीट्स भी जरूरी है, और अगर आप रोड पे हो तो रेन को एंजॉय करो, स्पीड को नहीं। क्लब मिर्ची में अभी पार्टी बस गर्म ही हो रही है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विद यू टुनाइट, लेट्स गो अगेन।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: अरे चाटा क्यों मारा?
4: चला पैसे निकाल।
3: किस बात के पैसे?
4: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
5: क्या बोला तूने?
3: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
6: क्या जोक मारा भाई?
3: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
4: कौन सा?
3: चाटा लगा
4: लगा।
7: मिर्ची, इट्स हॉट।
8: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
9: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM,
10: मिर्ची वन।
11: इट्स हॉट।
10: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर

भी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो अगर आज रात किसी गोल के बाद पड़ोस से जोर का चीयर सुनाई दे, डोंट पैनिक। फुटबॉल लवर्स आर सिंपली लिविंग द बेस्ट लाइफ, और हम भी ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंटिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: जॉन अब्राहम, आपके हिसाब से द टॉप फिट बॉयज ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री?
4: फर्स्ट रेफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी वरुण धवन एंड आई टेल यू व्हाई, क्योंकि वरुण का जो फिजिक है वो बहुत ही प्रोपोर्शनेट है, उसके लेग्स बहुत ही स्ट्रांग है, टाइगर श्रॉफ फैंटास्टिक बॉडी, रणवीर सिंह एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फिट, एंड ऑफकोर्स ऋतिक रोशन, ऑनेस्टली अमंगस्ट ऑल दीज इंक्लूडिंग माई सेल्फ आई थिंक सबसे फिटेस्ट इंसान हमारे इंडस्ट्री में इज अक्षय कुमार, एंड आई मीन होलिस्टिकली फिट, ही कैन सर्वाइव एनीवेयर। अगर आप उसको माउंट एवरेस्ट पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, अक्षय कुमार विल बी द ओनली गाय हु विल सर्वाइव एंड कम आउट।
3: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम, अक्षय कुमार इज द ओनली पर्सन इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बाय चॉइस इन जगहों पर जाएंगे। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना

Rainy nights are made for hot coffee, good company and even better music. अगर कंपनी नहीं है टेंशन किस बात की, क्लब मिर्ची है ना, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके पक्के दोस्त. Let's go baby.

वैसे पार्टी सिर्फ रेडियो तक ही क्यों? बिहाइंड द सीन्स क्रेजी रील्स और मस्त कंटेंट के लिए फॉलो करना मत भूलना डीजे रिचर्ड ऑफिशियल को। पार्टी कंटिन्यूज ऑन एयर भी और ऑनलाइन भी। क्लब मिर्ची इट इज विद मी मिर्ची और योंतिका।

और इसी के साथ आज की क्लब मिर्ची पार्टी यही रैप करते हैं। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। बारिश को एंजॉय करिए, फुटबॉल वर्ल्ड कप का एक्साइटमेंट सेलिब्रेट करिए अपनों के साथ, वक्त बिताइए और सबसे जरूरी सेफ रहिए। अगले वीकेंड फिर से मिलेंगे और लेकर आएंगे और भी ज्यादा म्यूजिक, मस्ती और मैडनेस। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप डांसिंग एंड कीप लिसनिंग टू क्लब मिर्ची। टाटा, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय अंजलि, मिर्ची हेल्पलाइन बोल।
0: यू नो आई लव ट्विनिंग, पर मेरा बीएफ मैचिंग कपड़े कभी नहीं पहनता, वो हर बार ना बोल देता है, क्या करूं?
1: आए, तो गलत थोड़ी बोल रहा है, लड़के स्कर्ट में थोड़ी अच्छे लगते हैं अंजलि।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स

मिर्ची। हेलो पीपल, वी कैन फाइनली नॉक कर रहा है और क्लब मिर्च ऑफिशियली ऑन हो चुका है। बाहर बारिश की बूंदे, अंदर बेस की धूम, तो वॉल्यूम फुल करो, मूड कूल करो और डांस फ्लोर हो या बोर्डम, गाड़ी हो या बालकनी, आज रात सिर्फ एक ही रूल है, नो रूल्स ओनली गुड वाइब्स। मैं हूँ मिर्ची ऑन द कैन विद मी इज डीजे रिचर्ड। अगले कुछ घंटों तक पार्टी नॉन स्टॉप, हिट्स बैक टू बैक और वर्ल्ड कप फीवर के साथ बारिश वाली मस्ती भी। वेलकम टू क्लब मिर्ची।

वीकेंड का सीन सिंपल है, फोन साइलेंट, वरीज ऑफलाइन और म्यूजिक फुल वॉल्यूम, बारिश को बैकग्राउंड डांसर बना दो और खुद बन जाओ टुनाइट्स मेन कैरेक्टर। क्लब मिर्ची इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योंतिका, लेट्स गो।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो,
3: इज दैट वर्षा? वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारे गमा पा।
2: क्या नाम बताया आपने?
3: धारे गमा पा। हमारा ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
2: थोड़ा बहुत गा लेती
3: हूं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर धारे गमा पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
2: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
3: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए आप। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
2: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
3: नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी। आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए।

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सर। स्टार्ट
1: मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊँ चाहिए तेरा तेरा तेरा सुरूर। एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा।
1: oh
2: लेकिन
1: अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। 89.6, 89.6, 81, it's hot. Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go.

0: वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर चाय के साथ पकोड़ा चल रहा है तो उसके साथ हमारा बीट्स भी जरूरी है, और अगर आप रोड पे हो तो रेन को एंजॉय करो, स्पीड को नहीं। क्लब मिर्ची में अभी पार्टी बस गर्म ही हो रही है। डीजे और चटन मिर्ची और ओम दिखा विद यू टुनाइट, लेट्स गो अगेन।
1: ਕੰਮ ਚਾਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹਨੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਿਆ ਕੁਚੇਲਾ।

फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो अगर आज रात किसी गोल के बाद पड़ोस से जोर का चीयर सुनाई दे, डोंट पैनिक। फुटबॉल लवर्स आर सिंपली लिविंग द बेस्ट लाइफ, और हम भी ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है

मॉनसून की रात नियॉन लाइट्स और फेवरेट गाने, इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो हो ही नहीं सकता. सो वेयर एवर यू आर वाइबिंग, बालकनी, टेरेस या लॉन्ग ड्राइव, क्लब मिर्ची इज योर परफेक्ट पार्टी पार्टनर. डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका विथ यू. लेट्स गो.

Rainy nights are made for hot coffee, good company and even better music. अगर कंपनी नहीं है टेंशन किस बात की, क्लब मिर्ची है ना। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके पक्के दोस्त। लेट्स गो बेबी।

लाइफ को कभी कभी शफल पे छोड़ देना चाहिए, पता नहीं अगला सरप्राइज एक फेवरेट गाना हो या एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी। एंजॉय एवरी बीट विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: आमिर खान इतनी सारी फिल्में और हर फिल्म में एक अलग फिजिक. What is the ultimate fitness tip?
4: I know everyone says this, but I can't stress how important it is to be regular in your workout. And along with that, for the best results, you need to have a very balanced and healthy diet. आम तौर पे लोग high protein diet करते हैं. You know, that's not healthy. The body needs proteins, but also needs carbohydrates. It needs fat. It needs everything. So we must have a balanced diet and a healthy diet and rest. You have to sleep well. You have to rest well.
3: Sleep well. ओहो हो हो, फिर तो फिट होना मुश्किल है आमिर खान. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल.
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल. ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं.
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार.
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन.
10: इट्स हॉट.
11: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो.

वर्ल्ड कप का फीवर भी फुल ऑन है। हर पास पे टेंशन, हर गोल पे सेलिब्रेशन, और हर सेलिब्रेशन के लिए एक ब्लॉकबस्टर गाना तो बनता है। तो सीट बेल्ट बांधो, वॉल्यूम बढ़ाओ, क्लब मिर्ची कंटिन्यूज विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंटिका।

वैसे पार्टी सिर्फ रेडियो तक ही क्यों? बिहाइंड द सीन्स क्रेजी रील्स और मस्त कंटेंट के लिए फॉलो करना मत भूलना डीजे रिचर्ड ऑफिशियल को। पार्टी कंटिन्यूज ऑन एयर भी और ऑनलाइन भी। क्लब मिर्ची डेज विद मी मिर्ची और योंतिका।

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: मैं एक लड़के को एक महीने से डेट कर रही थी, पर मुझे आज पता चला कि वो मैरिड है, क्या करूं?
1: अरे अच्छा है ना, एक बार जो उसने कमिटमेंट कर लिया तो दूसरी बार भी कर ही लेगा ना।
2: ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

मतलब सिर्फ रेस्ट नहीं, बेस्ट भी। डांस करो, गाओ या बस बारिश देखते हुए चिल करो। हम लेकर आए हैं नॉन स्टॉप हिट मशीन डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विद क्लब मिर्ची।

बारिश की स्मेल, फ्रेश प्लेलिस्ट और वीकेंड का थ्रिल, बस इसी कॉम्बो के लिए तो पूरा हफ्ता वेट करते हैं। अब डांस करना कंपलसरी है विद क्लब मिर्ची एंड डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंतिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारे रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
2: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
3: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, और बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
2: क्या तुझे पागल लग
3: नहीं
2: रहा है?
3: वो मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
2: क्या कहना है?
3: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। हेलो, चारू मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
5: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
6: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM Mirchi 1.
9: It's hot.
10: Ladies and gentlemen, we are gonna go
11: on a ride.

बारिश का मौसम है, कभी रोमांटिक कभी ड्रामेटिक, लेकिन प्लेलिस्ट हमारी सिर्फ फैंटास्टिक, सो डोंट टच दैट डायल, क्योंकि अभी पार्टी का लेवल और भी हाई होने वाला है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयंतिका विथ यू एंड दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: अरे चाटा क्यों मारा?
4: चला पैसे निकाल।
3: किस बात के पैसे?
4: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
5: क्या बोला तूने?
3: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
6: क्या जोक मारा भाई?
3: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
4: कौन सा?
3: चाटा लगा
4: भाई लगा।
7: मिर्ची, इट्स हॉट।
8: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
9: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
10: बहुत कुछ होगा।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6 FM मिर्ची वन।
13: इट्स हॉट।
14: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो।

छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज स्पीड से ज्यादा सेफ्टी को इम्पोर्टेंस दीजिए। वेट रोड्स पे ब्रेक्स को टाइम लगता है लेकिन एक्सीडेंट्स को नहीं। सीट बेल्ट ऑन रखिए, फोन साइड में रखिए और सेफली घर पहुंचिए। पार्टी बाद में भी होती रहेगी। डीजे रिचर्ड मिर्ची ऑयोमटिका आते हैं ना क्लब मिर्ची लेके हर हफ्ते।

म्यूजिक का वॉल्यूम हाई हो सकता है लेकिन स्माइल उससे भी हाई होनी चाहिए। वीकेंड है बॉस, डांस करो, गाओ, बारिश एंजॉय करो और क्लब मिर्ची के साथ गुड वाइब्स स्प्रेड करते रहो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन द गो विद यू टुनाइट।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है।
4: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं आप, यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। यू डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
3: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑल
1: बॉलीवुड बोल्डाल।
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
5: Our business is our business. None of your business.
6: Par didi, our entertainment is your entertainment. Entertainment,
7: Qatar ka number one radio station.
8: 89.6
9: FM, Mirchi 1. It's hot.
10: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go.

वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर चाय के साथ पकोड़ा चल रहा है तो उसके साथ हमारा बीट्स भी जरूरी है, और अगर आप रोड पे हो तो रेन को एंजॉय करो, स्पीड को नहीं। क्लब मिर्ची में अभी पार्टी बस गर्म ही हो रही है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योन टेक आउट विद यू टुनाइट, लेट्स गो।

सक्सेसफुल हो या कैंसिल, प्लेलिस्ट कभी डिसअपॉइंट नहीं करती। दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। सो वेदर यू आर एट अ हाउस पार्टी, कैफे या अपने रूम में सोलो कॉन्सर्ट कर रहे हो, क्लब मिर्ची इज राइट देयर विद यू। लेट्स गो।

0: emergency helpline.
1: Yeah. Hi there. What's up? Tell me.
0: सर मुझे वेकेशन पे गोवा जाना है पर बॉस लीव ही अप्रूव नहीं कर रहा है, क्या करूँ?
1: ओ मैन, गोवा के लिए अप्रूव नहीं कर रहे ना तो शिमला या मनाली चले जाओ.
2: रख, रख.
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983. इट्स हॉट.

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

पूरी रात नियॉन लाइट्स और फेवरेट गाने, इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो हो ही नहीं सकता। सो वेयरएवर यू आर वाइबिंग, बालकनी, टेरेस या लॉन्ग ड्राइव, क्लब मिर्ची इज योर परफेक्ट पार्टी पार्टनर। डीजे रिचर्ड मिर्ची ऑयल दे गो विद यू, लेट्स गो।

बारिश का अपना स्वैग होता है भाई, कभी रोमांटिक कभी फुल फिल्मी, और हम लेकर आए हैं इसी वाइब के ब्लॉकबस्टर ट्रैक्स। कीप स्माइलिंग कीप ग्रूविंग विद डीजे मिर्ची और योंतिका क्लब मिर्ची।

वर्ल्ड कप का सीजन है, हर मैच एक इमोशन और हर गोल एक सेलिब्रेशन। टीम कोई भी हो, म्यूजिक सबका कॉमन लैंग्वेज है। लेट्स कीप द एनर्जी रोलिंग विद क्लब मिर्ची एंड डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका।

कभी डांस फ्लोर पे स्टेप परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एटीट्यूड होना चाहिए 100%. सो फॉरगेट द मूव्स, जस्ट फील द म्यूजिक. दैट्स द क्लब मिर्ची वे विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर दिखा.

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा है, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करनी?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े हो गए, तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्ती उल्टा सीधा बोले जा रहा
0: है। उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा,
0: मेरी मेरी मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन लो भाई। मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपने नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकू
1: कुकड़ू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: इट्स पटाक।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर

फीवर भी फुल ऑन है। हर पास पे टेंशन, हर गोल पे सेलिब्रेशन, और हर सेलिब्रेशन के लिए एक ब्लॉकबस्टर गाना तो बनता है। तो सीट बेल्ट बांधो, वॉल्यूम बढ़ाओ, क्लब मिर्ची कंटिन्यूज विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: अरे चाटा क्यों मारा?
4: चला पैसे निकाल।
3: किस बात के पैसे?
4: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
5: क्या बोला तूने?
3: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
6: क्या जोक मारा भाई?
3: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
4: कौन सा?
3: चाटा लगा
4: लगा।
7: मिर्ची, इट्स हॉट।
8: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we

वीकेंड का मतलब सिर्फ रेस्ट नहीं, बेस्ट भी। डांस करो, गाओ या बस बारिश देखते हुए चिल करो। हम लेकर आए हैं नॉन स्टॉप हिट मशीन डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विद क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: मिलिन सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
4: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, I work very hard, so I need that fitness level.
3: And I need your motivation level, Milind Soman. आप सुन रहे हैं मिर्ची, It's Hot.
1: Bollywood Bol Dal.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood Bol Dal. Only on Mirchi, It's Hot.
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are

0: बोला।
1: बारिश का मौसम है, कभी रोमांटिक कभी ड्रामेटिक, लेकिन प्लेलिस्ट हमारी सिर्फ फैंटास्टिक, सो डोंट टच दैट डायल, क्योंकि अभी पार्टी का लेवल और भी हाई होने वाला है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोल्टिका विद यू एंड दिस इज द

रेन प्लस फ्रेंड्स प्लस म्यूजिक इक्वल्स टू वीकेंड गोल्स। और अगर फ्रेंड्स बिजी हैं तो स्पीकर को बेस्ट फ्रेंड बना लो, साथ डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो का तो है ही कंपनी देने के लिए। लेट्स गो अगेन।

रेडियो के बाद भी मिलते रहना यार फन रील्स बिहाइंड द माइक मोमेंट्स और एवरीडे मैडनेस के लिए फॉलो मी ऑन योंतिका ऑन सोशल मीडिया AYANTIKA वीकेंड वाइब्स कंटिन्यू ऑन योर फीड टू लेट्स गो दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंतिका.

खिड़की खोलो और बारिश की हवा को फील करो, फिर वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा दो। कुछ मोमेंट्स को सिर्फ एंजॉय किया जाता है, एक्सप्लेन नहीं। DJ Richard Mirchi, Oyo Antika with you on Club Mirchi.

नाइट हो या संडे चिल, एक बात फिक्स है, अच्छा म्यूजिक कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता, और जब क्लब मिर्ची हो साथ तो मूड ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो ही जाता है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची हो, यो अंतिका विद यू टुनाइट।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
3: आएंगे दीदी।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: जा सिमरन, जा जीले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
1: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।

89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

रोड्स पे वाटर लॉगिंग दिखे तो अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए, स्लो ड्राइव करिए, सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और फ्लडेड रोड्स को अवॉइड कीजिए। बारिश का मजा तभी है जब आप सेफली घर पहुंच जाए। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विद क्लब मिर्ची टुनाइट।

वीकेंड खत्म हो जाएगा लेकिन आज की मेमोरीज और ये गाने प्लेलिस्ट में हमेशा रहेंगे. सो लाफ अ लिटिल लाउडर, डांस अ लिटिल लॉन्गर और हर बीट को दिल से फील करो. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विथ यू टुनाइट.

वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर चाय के साथ पकोड़ा चल रहा है तो उसके साथ हमारा बीट्स भी जरूरी है, और अगर आप रोड पे हो तो रेन को एंजॉय करो, स्पीड को नहीं। क्लब मिर्ची में अभी पार्टी बस गर्म ही हो रही है। डीजे विच वटन मिर्ची और योन दिखा विथ यू टुनाइट, लेट्स गो अगेन।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
3: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
4: खूब मिलेगा, मिलेगा।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
7: लेडीज एंड जेंटलमैन, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go.

फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो अगर आज रात किसी गोल के बाद पड़ोस से जोर का चीयर सुनाई दे, डोंट पैनिक। फुटबॉल लवर्स आर सिंपली लिविंग द बेस्ट लाइफ, और हम भी ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: Govinda, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
4: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
3: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
4: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
3: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
4: ये तीनों एक्टर्स ऐसे इन लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका। ओहो अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
3: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: नहीं बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
8: Qatar का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go
9: on a ride.
10: Club Mirchi.

Rainy nights are made for hot coffee, good company and even better music. अगर कंपनी नहीं है टेंशन किस बात की, क्लब मिर्ची है ना, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंटिका आपके पक्के दोस्त. Let's go baby.

वैसे पार्टी सिर्फ रेडियो तक ही क्यों? बिहाइंड द सीन्स क्रेजी रील्स और मस्त कंटेंट के लिए फॉलो करना मत भूलना डीजे रिचर्ड ऑफिशियल को। पार्टी कंटिन्यूज ऑन एयर भी और ऑनलाइन भी। क्लब में चाहिए दिस विद मी मिर्ची और योंतिका।

इसी के साथ आज की क्लब मिर्ची पार्टी यही रैप करते हैं। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। बारिश को एंजॉय करिए, फुटबॉल वर्ल्ड कप का एक्साइटमेंट सेलिब्रेट करिए अपनों के साथ, वक्त बिताइए और सबसे जरूरी सेफ रहिए। अगले वीकेंड फिर से मिलेंगे और लेकर आएंगे और भी ज्यादा म्यूजिक, मस्ती और मैडनेस। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप डांसिंग एंड कीप लिसनिंग टू क्लब मिर्ची। टाटा, इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: जब हर बीट में हो तड़का तब बनती है चटनी।